1987 में रिलीज हुई मूवी सिंदूर का ये वाला गाना था। और अभी श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं और फिर इस 11 अक्टूबर रविवार से शरद नवरात्रि शुरू हो जाएंगी, यानी देश में तो उत्सव होगा ही लेकिन हमारा दिल्ली शहर जो है भाई वो चमक उठेगा। और रात में रंगीन लाइट्स की खूबसूरती वो तो अलग ही लेवल की होती है। और मंदिरों में भीड़, पकवान, सजावट, फल फूलों की खुशबू, मिठाइयों का स्वाद और खूब गरबा और डांडिया नाइट्स, और हाँ वो भजनों के पंडाल, मतलब बड़ा मजा आने वाला है। मुझे नहीं पता कि आपने अभी क्या प्लानिंग की हुई है। मैंने तो अपनी काफी सारी प्लानिंग जो है वो बनाकर रखी हुई है, कपड़े वगैरह भी तैयार कर लिए। और थोड़ा ये भी होता है ना कि जो इंपॉर्टेंट काम होते हैं उनको पहले ही कर लेना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे मैं सुबह सुबह कैसी बातें करूं, मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप अब जो दिन शुरू हो रहा है तो उसकी आप प्लानिंग कर सकें कि भाई आगे कैसे कैसे जल्दी जल्दी सारे बड़े बड़े काम खत्म करने, ताकि आप आराम से अपनी फैमिली के साथ जो है इन फेस्टिवल्स का मजा ले सके। अभी के लिए आप गानों का मजा लीजिए। मैं हूं पंकज आपके साथ सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर और शो का नाम है भोर सुहानी।

अभी स्टूडियो की खिड़की से मैंने देखा चांद इतना छोटा सा मतलब दिख रहा है, आधा सा, बहुत आधा सा दिख रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। अभी कहने को तो सुबह हो गई है लेकिन माहौल अभी जो है बिल्कुल एनवायरमेंट बिल्कुल रात जैसा लग रहा है। खैर सर्दियां आएंगी तो सुबह की रोशनी थोड़ी सी देर के बाद जो है वो निकलेगी और दिन तो हल्के हल्के छोटे हो ही गए हैं, तो अपने दिन के कामों की प्लानिंग जो है उसी के हिसाब से करें ताकि भाई जल्दी घर पहुंचे और फैमिली के साथ आप समय बिताए। आई होप आपको मेरे साथ समय बिताना भी अच्छा लगा होगा। और अब अगले घंटे आप सुनेंगे अर्पण शो सुरति जिंदल के साथ। और एक बात और आपसे मेरा कहने का मन है कि भाई प्रकृति को बचाएं, क्योंकि अपने घरों में खूब सारे हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए, गली मोहल्ले की जो है वो पेड़ों से हरियाली और भी ज्यादा सुंदर होती है। नेचर बचेगा तो हम बचेंगे और कंक्रीट के महल बेकार हैं भाई अगर साफ हवा

जिन पानी हमारे पास नहीं है। तो कभी आप ना मेरे घर आना, मैं आपको घर की छत दिखाऊंगा, अपनी नीम आम और पीपल के पेड़ के समेत और भी बहुत सारे मैंने पेड़ पौधे लगाए हैं और बड़ा मजा आता है। तो पौधे के बीच बैठकर चाय पियेंगे मैं और आप, ठीक है। अभी सुन रही है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल, मैं पंकज हूँ आपके साथ और भोर सुहानी शो का टाइम अब यही ओवर होता है और मैं आपसे जल्दी मिलूंगा दोबारा इसी शो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति, नमस्ते।

0: രഞ്ജിനി. ആകാശവാണി 103.6 റിയൽ FM. ഇനി നാളെ രാവിലെ 5:48 വരെ FM ഗോൾഡ് കേൾക്കാം ഡൽഹി റിലേ. ഏവർക്കും ശുഭരാത്രി. ജയ് ഹിന്ദ്.
1: वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद ने कर अधिकारियों का गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त कर दिया है. नई दिल्ली में आज जीएसटी परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि परिषद ने जुर्माने और कारावास की सजा का निर्णय सक्षम अदालत के विवेक पर छोड़ दिया है.
2: The council recommended removing arrest powers under GST.
3: जीएसटी परिषद ने गिरफ्तारी का प्रावधान हटाने की सिफारिश की है. परिषद ने अभियोजन की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए करने की भी सिफारिश की है. इसके अंतर्गत 5 करोड़ रुपए से कम की कर चोरी के मामलों में मुकदमा नहीं चलाया जाएगा. सामान्य जुर्माने की राशि 25,000 रुपए से घटाकर 10,000 रुपए करने की भी सिफारिश की गई है.
2: From 25,000 to ₹10,000.
1: टैक्स फाइलिंग में गलती या भुगतान करने में विलंब करने पर करदाता को वसूली, ब्याज और आनुपातिक जुर्माने का सामना करना पड़ेगा. वित्त मंत्री ने बताया कि दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है और उन्होंने कहा कि परिषद ने नोटिस और कार्रवाई के लिए सामान्य मानकों की सिफारिश की है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दूरसंचार और डिजिटल प्रौद्योगिकी के बढ़ते महत्व को देखते हुए सुरक्षा ढांचा मजबूत करना बहुत आवश्यक हो गया है. श्री मोदी ने आज नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन करते हुए ये बात कही.
4: आज जब टेलीकॉम और डिजिटल टेक्नोलॉजी का इतना महत्व है तब इससे जुड़ी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को भी चाक चौबंद करना बहुत आवश्यक है. फोन की सिक्योरिटी और नेटवर्क की सिक्योरिटी ये हम सभी की प्राथमिकता है. एक सामान्य नागरिक प्रोटोकॉल या आर्किटेक्चर की भाषा में नहीं सोचता, उसके लिए ट्रस्ट बहुत अहम है. जब उसको फोन पर आए तो उसे पता हो कि कॉल कौन कर रहा.
1: श्री मोदी ने डीप फेक और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए वैश्विक ढांचे का आह्वान किया. प्रधानमंत्री ने कहा कि 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है. श्री मोदी ने कहा कि भारत में 5G कनेक्टिविटी के संचालन के लिए

0: आज 5,50,000 से अधिक आधार स्टेशन हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 5G को विश्व में सबसे तेजी से अपनाई गई टेक्नोलॉजी बनाने में उपकरण निर्माताओं, दूरसंचार संचालकों और दूरसंचार क्षेत्र के हर कर्मी की सराहना की। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विनियमन पर एक परामर्श पत्र अगले महीने जारी किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वादा विषय पर आज विश्व विकास रिपोर्ट 2026 जारी करने के बाद श्री वैष्णव ने कहा कि परामर्श पत्र एआई और साइबर सुरक्षा, एआई के लाभ और संभावित नुकसान पर केंद्रित होगा। 42 पूर्व न्यायाधीशों ने देश की जनता को एक खुला पत्र लिखकर निर्वाचन आयोग, न्यायपालिका और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने के प्रयासों पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने लिखा कि इसके केंद्र में निर्वाचन आयोग है और उच्च न्यायपालिका और वैधानिक एजेंसियां भी इससे अछूती नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में तपेदिक मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत संयुक्त स्वास्थ्य दल जोश टीमों का शुभारंभ किया। ये भारत में तपेदिक उन्मूलन के प्रयासों में युवाओं के नेतृत्व वाली सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आज भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में भारतीय सेना की 94वीं वर्षगांठ के समारोह में हिस्सा लिया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने वायु सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवार के सदस्यों से बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी ने भी वायुसेना दिवस पर देश के सभी बहादुर वायु योद्धाओं को सलाम किया। भारत की पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। सिंधु ने आज महिला सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की रिकू कुंची को हराया। तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स और थरुण मान्यपली पुरुष सिंगल्स में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renuka. The GST Council, during its 57th meeting in New Delhi today, approved a series of measures to ease compliance for taxpayers. The decisions include scrapping the arrest powers of tax officers under the GST regime and raising the threshold for prosecution from 5 crore rupees to 1 crore rupees. Finance Minister Nirmala Sitharaman made the announcement while addressing the media in National Capital this evening.
2: The council recommended removing arrest powers under GST. Council recommended raising the prosecution threshold from 1 crore to 5 crore. So prosecution is not going to happen for anything below 1 crore. Till now, that's been the threshold. Now it's taken up to 5 crores.
1: The punishment, whether a fine, imprisonment or both, will be left to judicial discretion in each case. A taxpayer who files a return late, makes a mistake or falls behind on payment will face recovery proceedings, interest and a proportionate penalty. The finance minister said no changes has been made to GST rates at the meeting and that the rate structure is settled. She said the GST council has recommended common standards for notices and proceedings. Ms. Sitharaman said the council had also taken steps to facilitate the smoother movement of goods. Prime Minister Narendra Modi has emphasized that strengthening the security framework has become essential in view of the growing importance of telecom and digital technology. Mr. Modi stated this while inaugurating the 10th edition of the India Mobile Congress at Yashobhumi in New Delhi today. Mr. Modi also highlighted the growing challenges of deepfakes and cyber fraud and called for the development of a global framework to tackle the threat. Prime Minister Modi said India's telecom sector is steadily moving towards greater self-reliance. He also said the Digital India campaign has been at the core of the country's digital transformation, with the mobile phone placed at the center of the initiative to bridge the digital divide and make technology more accessible to all. Mr. Modi said that 5G connectivity has now reached every district of the country. Electronics and IT Minister Ashwini Vaishnaw has said

0: Well, before we move into the program, we'd like to share that the views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में आज भी सुस्ती जारी रही। सेंसेक्स 1045 अंक यानी 1.44% गिरकर 71,593 पर बंद हुआ। निफ्टी 371 अंक यानी 1.64% लुढ़ककर 22,232 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार में और अधिक गिरावट देखी गई। मिड कैप

0: सूचकांक 2.5% से ज्यादा जबकि स्मॉल कैप सूचकांक 2.3% से अधिक नीचे आ गया।
1: Benchmark domestic equity indices extended losses today amid weak global cues. The Sensex tanked 1,045 points or 1.44% to close at 71,593. The Nifty dropped 371 points or 1.64% to settle at 22,232. The broader market at the National Stock Exchange ended with deeper cuts. The mid-cap 100 index lost over 2.5% and the small-cap 100 index declined more than 2.3%.
0: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 27 कंपनियों के शेयरों में गिरावट देखी गई। सबसे अधिक नुकसान वाली कंपनियों के शेयरों में आईटीसी 4.2% से ज्यादा, इंडिगो लगभग 3.4% और पावर ग्रिड लगभग 3.2% लुढ़क गए। इसके विपरीत टेक महिंद्रा में 0.4% से ज्यादा और एक्सिस बैंक तथा इन्फोसिस में 0.2% से अधिक की बढ़त दर्ज की गई।
1: All 28 sectoral indices on the BSE succumbed to selling pressure. Among the top laggards, power plunged 3.5%, utilities fell 3.4%, and metal dropped more than 3.3%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 3,426 companies declined, 1,003 advanced, and 225 remained unchanged.
0: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले मामूली गिरावट के साथ 96.79 पर बंद हुआ। सिद्धार्थ, एक बार फिर से कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज दो सवाल पूछने का मन हो रहा है आपसे। सबसे पहले एक तो 1000 अंक से अधिक की जो गिरावट हमने देखी सेंसेक्स में, बड़े कारण इनके पीछे क्या रहे, और दूसरा ये क्या यही वो समय है जब निवेशकों को अपना पैसा मार्केट में लगाना चाहिए, या अभी भी समय है रुकने का, या नए निवेशकों को अपनी किस्मत आजमाने का समय है?
2: नहीं देखिए निखिल, एक तो आपका जो पहला सवाल कि बाजार आज 1100 पॉइंट गिरी और निफ्टी तकरीबन इस साल के सबसे लो स्तर पे आके लो पॉइंट पे बंद हुआ है, तो मुझे लगता है कल और आज में ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसकी वजह से कि बाजार में 1100 पॉइंट की गिरावट आए। लेकिन हाँ, शायद मुझे लगता है जो कॉन्फिडेंस है बाजार में वो कहीं ना कहीं अब टूटता नजर आ रहा है, क्योंकि जो अनिश्चितता है और सारी इसकी सबकी वजह एक अनिश्चितता है, जो अनसर्टेनिटी है वो सर्टेन हो गई है। चाहे वो क्रूड ऑयल को लेके हो, क्रूड ऑयल के प्राइजेस अभी भी बहुत ऊंचे स्तर पे हैं। पूरी दुनिया में अब जो है इंटरेस्ट रेट्स आप देख रहे हैं बढ़ रहे हैं, चाहे वो अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, कल हमारे सेंट्रल बैंक ने भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाए, तो कहीं ना कहीं रेट बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं उसका जो विकास की जो दर है उस पर भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आने का डर रहता है। हालांकि अभी भी हम दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते हुए देश हैं, जो विकास दर है हमारी अभी भी 7% है। कल RBI ने भी रिवाइज की है, अपवर्ड रिवाइज की है, लेकिन कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन का खतरा है, महंगाई, तो वो ये सब मुझे लगता है कहीं ना कहीं बाजार पे जो है अब हावी हो रहे हैं, और इसी का नतीजा हम देख रहे हैं इस तरह की गिरावट बाजार में। और जो दूसरा आपका सवाल है कि क्या निवेशकों को इस समय घुसना चाहिए, उस पर मैं ये जरूर कहूंगा कि देखिए, हाँ, बाजार जब नीचे गिरती है तो शायद लोग उस समय लोग खरीदते नहीं हैं, लेकिन मैं ये बोलूंगा किसी भी निवेशक को, हालांकि मुझे लगता है अभी भी बाजार में डाउनसाइड है और इस तरह की वॉलेटिलिटी बनी रहेगी, क्योंकि ये जो कारण है अनिश्चितता के, ये कभी जो या काले बादल में कहूं इस तरह के, और जो और खासकर ये सब बाहर में, देश के बाहर से के कारण है, हमारी मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स में कोई दिक्कत नहीं है। तो लगता है ये अभी लंबे समय तक इस तरह की अनसर्टेनिटी दिखती है, ये जल्दी सॉल्यूशन होगा, ईरान या अमेरिका का जो युद्ध है या यूक्रेन और रशिया में आप देखेंगे वॉर की इंटेंसिटी और बढ़ गई है। तो मैं ये कहूंगा कि निवेशकों को बहुत ध्यान से, मतलब बिल्कुल जल्दबाजी नहीं, लेकिन मुझे लगता है हाँ, बहुत थोड़ा थोड़ा, बहुत धीरे धीरे, बहुत संभल के आप जरूर मार्केट में एंटर कर सकते हैं, लेकिन इस बात को भी मान के चलें कि तुरंत पैसा नहीं बनेगा।
1: राइट, इनफैक्ट टेकिंग दिस पॉइंट फॉरवर्ड, यू नो सिद्धार्थ, व्हेन वी से दैट व्हेन एनी टाइम वी इन्वेस्ट इन अ फॉलिंग मार्केट, वी थिंक इट्स अ फॉलिंग मार्केट एंड इट विल बिकम अ राइजिंग मार्केट, एक्चुअली अ फॉलिंग मार्केट कुड फॉल फर्दर, कुड स्टे देयर, टेक्स टाइम टू बिकम अ, सो आई थिंक एनीबॉडी हू इज बाइंग इन अ फॉलिंग मार्केट शुड एक्चुअली बी देयर एटलीस्ट फॉर अ लिटिल लॉन्गर पीरियड then one would really expect markets to immediately rebound.
2: Absolutely, Gaurav, because if you look at certain stocks, they are almost at 52-week low now. Lot of them almost on their one-year lows. But the chances of they dropping further is not ruled out. So that is why I said, first, invest in very, very small tranches, very, very, and be very carefully, choose your sectors, choose your stocks, and the gestation of return or of getting a healthy return is definitely at least 2 to 3 year time period होराइजन।

0: you should have in mind. Plus, also the levels going further down is not ruled out at all.
1: Right. So, you know, we have global crude oil prices. They're rising. That's a concern. There's this prolonged tight monetary conditions and foreign fund outflows. Just help our listeners also understand when we talk of, you know, tight monetary conditions. One is, of course, interest rates. Anything else?
0: See, basically what happens is when the interest rates start going up, obviously, India was lucky, I would say, before the rates started going up, we went to the markets overseas and we were able to garner about $130 billion through FCNR deposits, which is a huge plus for us because we are net importers of energy.
1: Right.
0: And our energy bill, obviously, because of the high crude oil prices, is very high. And what happens in tight monetary conditions also is that people start pulling out from the equity markets because you get a good return in the bond markets and especially the US markets. Why FII is also exiting Indian markets? Because the US Treasury bonds are now almost at 5.5%, and which are seen as most secure investments across the world. So I think that is what happens in the tight monetary market, and that is why we are also seeing an impact in the markets globally also.
2: सिद्धार्थ, जैसा भी आपने एफआईएस के बारे में जिक्र किया, क्या ये है कि हमारे जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, डीआईएस है, उन्होंने मार्केट को भी संभाला हुआ, ऐसी स्थिति में भी जब निफ्टी लगभग 15% नीचे आ चुका है और सेंसेक्स भी अपने 32 महीने के निचले स्तर तक पहुंच चुका है?
0: नहीं निखिल, देखिए, अगर ऐसा ना होता, जो हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, अब वो बहुत बड़े तादाद में बाजार में निवेश करते हैं, चाहे वो रिटेल के थ्रू आए या वो म्यूचुअल फंड रूट से आए, तो वो एक, और अभी तक ऐसा कोई हमारे पास प्रमाण नहीं है. थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट के लेवल्स में थोड़ा बहुत कमी आई है, हम अगर SIP के रूट में देखें, म्यूचुअल फंड में भी, लेकिन विच इज ऑल्सो वेरी वेरी मार्जिनल. तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई कारण है जहां पे हमारा डोमेस्टिक इन्वेस्टर या डोमेस्टिक कोई कारण हो बाजार के गिरने के. और जहां तक आपने FIIs की बात की, मैं दो बातें कहूंगा. देखिए, FIIs के पास का जो एक जो उनका इन्वेस्ट करने का जो लॉजिक होता है, वो होता है प्रॉफिट इज देयर मोटिव. तो वो ऑब्वियसली उनको लगता है कि दूसरी बाजारों में ज्यादा में निवेश करके उनको रिटर्न्स बेटर मिलेंगे, तो वो इसलिए जा रहे हैं. दूसरा, जैसा अभी गौरव ने पहले पूछा भी और बात भी हुई इसकी, कि बॉन्ड मार्केट, दुनिया भर की बाजारों में जो बॉन्ड यील्ड्स हैं वो काफी ऊपर जा रही है, तो कहीं ना कहीं लोग इक्विटी मार्केट से निकल के बॉन्ड मार्केट की तरफ भी FIIs जा रहे हैं.
2: लार्ज कैप की हम बात करें, मिड कैप सूचकांक और स्मॉल कैप सूचकांक में भी गिरावट दिखी. हालांकि कल स्मॉल कैप में थोड़ी सी बढ़त हम देख रहे थे, लेकिन आज वो अच्छा खासा गिर गया.
0: नहीं, मार्केट्स में जो गिरावट है वो, जैसा अभी आपने रिपोर्ट में भी पढ़ा, वो कहीं ना कहीं पूरी ऑल राउंड है. मतलब इट इज नॉट स्पेसिफिक टू एनी लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप. तो देयर इज जनरल फॉल इन द मार्केट.
2: आगे बढ़ते हैं. टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS ने मौजूदा वित्त वर्ष में जुलाई से सितंबर के बीच में अपनी दूसरी तिमाही के लिए वित्तीय परिणाम जारी किए हैं. परिचालन गतिविधियों से कंपनी का समेकित राजस्व वार्षिक आधार पर 11% बढ़कर 73,188 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है. TCS का वर्ष दर वर्ष समग्र कुल लाभ 15% की बढ़त के साथ 13,884 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया है. इस अवसर पर कंपनी ने निवेशकों के लिए 15 रुपए प्रति शेयर के लाभांश की घोषणा की है. आज एशिया के प्रमुख शेयर सूचकांकों में गिरावट देखी गई. सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक 3.5% गिर गया. दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 2.6% से ज्यादा नीचे आ गया और जापान का निक्केई 225 1.4% से ज्यादा की सुस्ती के साथ बंद हुआ. एशिया के प्रमुख शेयर सूचकांकों में गिरावट आई. ओवरऑल कह सकते हैं कि पूरे संसार का जो मार्केट है, गिरावट के दौर से ही गुजर रहा है.
0: हाँ बिल्कुल, बिकॉज आई थिंक एक अनिश्चितता है. क्रूड ऑयल उसका बड़ा कारण है. क्रूड ऑयल के जो भाव में तेजी है, साथ साथ जो बॉन्ड यील्ड्स हैं और जो महंगाई का प्रेशर बना हुआ है, तो सारे दुनिया के सेंट्रल बैंक सभी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहे हैं और उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हमको बाजार में दिख रहा है. और ये ऐसा हुआ जो आपने बोला कि हमने देखा कि साउथ कोरिया की मार्केट में भी गिरा, जबकि अगर आप देखेंगे कि जहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्टॉक्स या कंपनीज, उनके जैसे सैमसंग, मैं कंपनी का नाम भी लूंगा, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आए, उसके बावजूद भी मार्केट में वहां गिरावट देखने को मिली.
1: मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट मेजर स्टोरी. The GST Council has removed the power of arrest of tax officers and raised the threshold for prosecution from 1 crore to 5 crore rupees. The punishment, whether a fine or imprisonment or both, has been left to judicial discretion in every case. A taxpayer who files late, makes a mistake or falls behind on payment will face recovery, interest and a proportionate penalty. Addressing the media following the GST Council meeting in New Delhi, this evening, the finance minister said the council recommended removing arrest powers under GST and raising the prosecution threshold.
3: The council recommended removing arrest powers under GST. Council recommended

0: to a trust-based, as I said earlier, to a trust-based tax administration, and prosecution obviously leads to that kind of fear that you will be arrested, you know, you will be taken to court, then all those kind of things. So that creates a fear in the minds of the people who are into business. They want simpler rules which they can comply easily, and it also brings down the cost for a small taxpayer, if I would say like that. So, and similarly, I would say going forward, I would also say that there are a lot of measures being announced in terms of input tax credit, which is very critical for any business house. So supposing you are a buyer, you have bought you paid your bill, you paid the input tax, or you want to take the credit, perhaps from the person from you bought, he may not have, you know, paid the tax. So there also, again, a committee has been formed for how to make it easy for an honest taxpayer to claim input tax, which he has paid.
1: Right. So that means if there's a legacy issue with the chain or with the thread, who is held actually? Is the actual person really being held
0: yes,
1: for that?
0: Yeah. And I would say another very big announcement, which again, I think what the Honorable Finance Minister today said is that they are going to introduce from the central government side for a certain turnover, above certain turnover, people doing businesses above certain turnover, a faceless assessment. So you do not need to go tax person representative does not need to go to any tax office or appear before a tax official. They would introduce a faceless assessment, as is being done very successfully on the income tax side, already being done in the customs side. So I think this again is
1: huge move.
0: Yeah, I think probably it's a very, very big announcement and would go a long way to, because there are a lot of, you know, always we have grievances that people are harassed, all those kind of things. So I think we are moving toward that, and GST almost now 10 years. So I think this is today's meeting, I think has done moved. It's a big leap forward in terms of easing the processes, simplifying the rules.
1: Right.
2: Siddharth, इसमें एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा, आपसे पूछना भी चाहूंगा कि ये जो फैसले लिए गए हैं, तो ये क्या जीएसटी से जुड़े पुराने विवाद और लंबित मामले चले आ रहे हैं, उनको तेजी से निपटाने की दिशा में किए गए प्रयास हैं?
0: बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक बात कही, क्योंकि निखिल, आपने अगर अभी जैसा हमने सुना भी, वित्त मंत्री जी ने बोला कि जिन लोगों को नोटिस दिए गए हैं, जहां पे टैक्स पेमेंट जो नॉन टैक्स जो जहां पे टैक्स नहीं दिया गया है, 10,000 रुपए तक के नोटिस दी गई है, जहां पे डिफॉल्ट जो है 10,000 रुपए तक का है, तो उन वो नोटिसेस भी विड्रॉ कर ली जाएंगी। और बिल्कुल, जब अगर प्रोसिक्यूशन की लिमिट बढ़ेगी या 10,000 रुपए तक आपको अभी तुरंत नोटिस इशू हो जाती थी, अगर उसके तो वो उन सब चीजों से कहीं ना कहीं जो है, एक तो टैक्स ऑफिशियल का भी काम घटेगा, क्योंकि वो भी ज्यादा फोकस कर पाएंगे कि जहां एरियाज जहां पे ज्यादा उनको लोगों को फायदा देने की जरूरत है, टैक्स पेयर सर्विसेज बेटर करने की जरूरत है, साथ साथ जो टैक्स पेयर है उसको भी कंप्लायंस बर्डन उसका कम होगा जब इस तरह की चीजें।
1: इन फैक्ट द मोर वन इज लिसनिंग टू यू, आई कैन एक्चुअली फील अ लॉट ऑफ साइज ऑफ रिलीफ अक्रॉस, यू नो, सेइंग ओके, वी हैव बीन होल्डिंग आवर ब्रेथ, दिस इज हाउ इट इज।
0: And I would also add, Gaurav, one thing more for our listeners, that companies which are now paying for health and life insurance plans for the companies, for their employees, they can also claim input tax credit. Plus also the telecom towers and the pipelines outside their factories installation, for that also now input tax credit is being brought in.
1: Right.
2: Okay. आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विनियमन पर एक परामर्श पत्र अगले महीने जारी किया जाएगा। उन्होंने आज द प्रॉमिस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विषय पर वैश्विक प्रगति रिपोर्ट जारी की। श्री वैष्णव ने कहा कि आगामी परामर्श पत्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सुरक्षा, इसके लाभ तथा संभावित नुकसान पर केंद्रित होगा। उन्होंने ये भी कहा कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाने और लोगों को डीप फेक जैसे हानिकारक अनुप्रयोगों से बचाने पर बल दिया जाएगा। श्री वैष्णव ने कहा कि कृषि, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में एआई के उपयोग से समाज को अधिकतम लाभ मिलेगा। सिद्धार्थ, एक ग्राउंड लेवल पर अगर एआई के इस्तेमाल की हम बात करते हैं, तो सरकार का ये प्रयास है कि आम लोगों तक भी एआई का इस्तेमाल पहुंचे और डीप फेक जैसी समस्याएं हैं उनसे भी बचने में मदद मिले, साथ ही जो इनका वैल्यूएबल एक इस्तेमाल किया जा सकता है उस पर बात होनी चाहिए, उस पर काम होना चाहिए, तमाम कोशिशें इसी चीज को लेकर हैं।
0: इसी के लिए मुझे लगता है उन्होंने जो हमारे आईटी मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव जी ने जो कहा है कि कंसल्टेशन पेपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए हमसे जुड़े जो भी मुद्दे हैं उनके बारे में जो है वो फ्लोट किया जाएगा और पब्लिक कंसल्टेशन किया जाएगा, और उसमें जो मुझे लगता है सबसे ज़रूरी है, जो आपने बात बोली कि डीप फेक है, साइबर सिक्योरिटी है, उसके जो नुकसान है उनको जो है लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, और कैसे उसका हम जो है अपने फायदे के लिए इस्तेमाल

0: वो कृषि हो या मौसम के बारे में किसानों तक पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन पहुंचाना। और मुझे लगता है एआई एक ऐसा क्षेत्र है जो अब हमारे आपके सबकी जिंदगी को रोज छुएगा और छू रहा है, तो इसमें अगर सरकार को बहुत तेजी से काम कर रही है तो ये मुझे लगता है इट्स अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन।
1: राइट, एंड फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया वेयर वी हैव एजुकेशन, वी हैव एक्चुअली लॉट ऑफ डेप्थ टू ट्रैवल, नॉट ओनली विड्थ, आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट द अर्लियर वी स्टार्ट द बेटर।
0: या बिकॉज आई थिंक यस, दो वी हैव एजुकेशन, ऑब्वियसली एवरीबॉडी इज, मोस्ट ऑफ द पीपल हियर हैव नाउ एक्सेस टू एजुकेशन, स्टिल पीपल आर बीइंग नाउ चीटेड ऑन दीज लाइन्स, सो आई थिंक गवर्नमेंट इज टेकिंग द राइट स्टेप।
1: Awareness is right, absolutely. In our next story, India has joined the United States and 13 other economies in signing a joint ministerial statement calling for measures to address structural excess capacity and production and curb non-market policies that distort global markets. The joint ministerial statement signed by the 15 participating economies was released by the Office of the U.S. Trade Representative last night following discussions among G20 trade ministers in Milwaukee, Wisconsin on September 30th and October 1st, 2000.

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सिर्फ और सिर्फ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं रितिका और कार्यक्रम है गीत मेरे मनमीत।

तो दोस्तों, गीत मेरे मनमीत में आज बस इतना ही। सुरभि आ चुकी हैं स्टूडियो में निशिगंधा लेकर। छोड़े जाती हूँ आप सभी को उन्हीं के साथ। आप बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद ने कर अधिकारियों का गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त कर दिया है। नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि परिषद ने जुर्माने और कारावास की सजा का निर्णय सक्षम अदालत के विवेक पर छोड़ दिया है।
1: The council recommended removing arrest powers under GST.
2: जीएसटी परिषद ने गिरफ्तारी का प्रावधान हटाने की सिफारिश की है। परिषद ने अभियोजन की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए करने की भी सिफारिश की है। इसके अंतर्गत 5 करोड़ रुपए से कम की कर चोरी के मामलों में मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। सामान्य जुर्माने की राशि 25,000 रुपए से घटाकर 10,000 रुपए करने की भी सिफारिश की गई है।
1: From 25,000 to 10,000.
0: टैक्स फाइलिंग में गलती या भुगतान करने में विलंब करने पर करदाता को वसूली, ब्याज और आनुपातिक जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि परिषद ने नोटिस और कार्रवाई के लिए सामान्य मानकों की सिफारिश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दूरसंचार और डिजिटल प्रौद्योगिकी के बढ़ते महत्व को देखते हुए सुरक्षा ढांचा मजबूत करना बहुत आवश्यक हो गया है। श्री मोदी ने नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन करते हुए ये बात कही।
3: आज जब टेलीकॉम और डिजिटल टेक्नोलॉजी का इतना महत्व है, तब इससे जुड़ी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को भी चाक चौबंद करना बहुत आवश्यक है। फोन की सिक्योरिटी और नेटवर्क की सिक्योरिटी, ये हम सभी की प्राथमिकता है। एक सामान्य नागरिक प्रोटोकॉल या आर्किटेक्चर की भाषा में नहीं सोचता, उसके लिए ट्रस्ट बहुत अहम है। जब उसको फोन पर आए तो उसे पता हो कि कॉल कौन कर रहा है।
0: श्री मोदी ने डीप फेक और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए वैश्विक ढांचे का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 5G को विश्व में सबसे तेजी से अपनाई गई टेक्नोलॉजी बनाने में उपकरण निर्माताओं, दूरसंचार संचालकों और दूरसंचार क्षेत्र के हर कर्मी की सराहना की। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विनियमन पर एक परामर्श पत्र अगले महीने जारी किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वादा विषय पर आज विश्व विकास रिपोर्ट 2026 जारी करने के बाद श्री वैष्णव ने कहा कि परामर्श पत्र एआई और साइबर सुरक्षा, एआई के लाभ और संभावित नुकसान पर केंद्रित होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में एक समारोह में तपेदिक मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत संयुक्त स्वास्थ्य दल जोश टीमों का शुभारंभ किया।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़, और मैं हूं आपके साथ सुरभि, लेकर प्रोग्राम निशिगंधा। चांद से, फूल से या मेरी जबां से सुनिए, चांद से, फूल से या मेरी जबां से सुनिए, हर तरफ आपका किस्सा है जहां से सुनिए। सबको आता नहीं दुनिया को सताकर जीना, सबको आता नहीं दुनिया को सताकर जीना, जिंदगी क्या है मोहब्बत की जबां से सुनिए। मेरी आवाज ही पर्दा है मेरे चेहरे का, मैं हूं खामोश जहां, मुझको वहां से सुनिए। मेरी आवाज ही पर्दा है मेरे चेहरे का, मैं हूं खामोश जहां, मुझको वहां से सुनिए। जिंदगी क्या है मोहब्बत की जबां से सुनिए।

निशिगंधा प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। अगला गीत बहुत ही खूबसूरत सा लेकर आए हैं आपके लिए। बहुत खूब कहा किसी ने कि किसने झलक पर्दे से दिखा दी, आंख ने देखा तो दिल ने दुआ दी। किसने झलक पर्दे से दिखा दी, आंख ने देखा और दिल ने दुआ दी। रात एक ऐसी रोशनी देखी, रात एक ऐसी रोशनी देखी, मारे खुशी के शम्मा बुझा दी। तुमने दिखाए ऐसे सपने, नींद में सारी उम्र गवा दी। किसने झलक पर्दे से दिखा दी, आंख ने देखा और दिल ने दुआ दी।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

निशी गंधा आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। कभी खामोश बैठोगे कभी कुछ गुनगुनाओगे, कभी खामोश बैठोगे कभी कुछ गुनगुनाओगे, मैं उतना याद आऊंगा मुझे जितना भुलाओगे। कोई जब पूछ बैठेगा खामोशी का सबब तुमसे, कोई जब पूछ बैठेगा खामोशी का सबब तुमसे, बहुत समझाना चाहोगे मगर समझा ना पाओगे। मैं उतना याद आऊंगा मुझे जितना भुलाओगे। कहीं पर भी रहे हम तुम मोहब्बत फिर मोहब्बत है, कहीं पर भी रहे हम तुम मोहब्बत फिर मोहब्बत है, तुम्हें हम याद आएंगे हमें तुम याद आओगे, तुम्हें हम याद आएंगे हमें तुम याद आओगे। और बहुत खूब कहा है किसी ने, तो चलिए इसी के चलते सुनते हैं ये गीत। फिल्म है पगला कहीं का।

निशिगंधा प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। बहुत खूब कहा है किसी ने कि तेरे ही कदमों में मरना भी अपना जीना भी, तेरे ही कदमों में मरना भी अपना जीना भी, कि तेरा प्यार है दरिया भी और सफीना भी। मेरी नजर में सभी आदमी बराबर हैं, मेरे लिए जो है काशी वही मदीना भी। तेरे ही कदमों में मरना भी अपना जीना भी, कि तेरा प्यार है दरिया भी और सफीना भी।

बहुत खूब कहा है किसी ने कि यकीन चांद पे सूरज पे एतबार भी रख, यकीन चांद पे सूरज पे एतबार भी रख, मगर निगाह में थोड़ा सा इंतजार भी रख। खुदा के हाथ में मत सौंप सारे कामों को, बदलते वक्त पे कुछ अपना इख्तियार भी रख। यकीन चांद पे सूरज पे एतबार भी रख, मगर निगाह में थोड़ा सा इंतजार भी रख।

अपनी मर्जी से कहां अपने सफर के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर है उधर के हम हैं। और हमारी आपकी मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम की सुहाने में 1:10 पर, और आपसे कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद ने कर अधिकारियों का गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त कर दिया है। नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि परिषद ने जुर्माने और कारावास की सजा का निर्णय सक्षम अदालत के विवेक पर छोड़ दिया है।
1: The council recommended removing arrest powers under GST.
2: जीएसटी परिषद ने गिरफ्तारी का प्रावधान हटाने की सिफारिश की है। परिषद ने अभियोजन की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए करने की भी सिफारिश की है। इसके अंतर्गत 5 करोड़ रुपए से कम की कर चोरी के मामलों में मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। सामान्य जुर्माने की राशि 25,000 रुपए से घटाकर 10,000 रुपए करने की भी सिफारिश की गई है।
1: From 25,000 to rupees 10,000.
0: टैक्स फाइलिंग में गलती या भुगतान करने में विलंब करने पर करदाता को वसूली, ब्याज और आनुपातिक जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि परिषद ने नोटिस और कार्रवाई के लिए सामान्य मानकों की सिफारिश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दूरसंचार और डिजिटल प्रौद्योगिकी के बढ़ते महत्व को देखते हुए सुरक्षा ढांचा मजबूत करना बहुत आवश्यक हो गया है। श्री मोदी ने नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन करते हुए ये बात कही।
3: आज जब टेलीकॉम और डिजिटल टेक्नोलॉजी का इतना महत्व है, तब इससे जुड़ी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को भी चाक चौबंद करना बहुत आवश्यक है। फोन की सिक्योरिटी और नेटवर्क की सिक्योरिटी, ये हम सभी की प्राथमिकता है। एक सामान्य नागरिक प्रोटोकॉल या आर्किटेक्चर की भाषा में नहीं सोचता, उसके लिए ट्रस्ट बहुत अहम है। जब उसको फोन पर आए तो उसे पता हो कि कॉल कौन कर रहा है।
0: श्री मोदी ने डीप फेक और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए वैश्विक ढांचे का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 5G को विश्व में सबसे तेजी से अपनाई गई टेक्नोलॉजी बनाने में उपकरण निर्माताओं, दूरसंचार संचालकों और दूरसंचार क्षेत्र के हर कर्मी की सराहना की। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विनियमन पर एक परामर्श पत्र अगले महीने जारी किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वादा विषय पर विश्व विकास रिपोर्ट 2026 जारी करने के बाद श्री वैष्णव ने कहा कि परामर्श पत्र एआई और साइबर सुरक्षा, एआई के लाभ और संभावित नुकसान पर केंद्रित होगा। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के सूखे से प्रभावित 265 तालुकाओं में अनाज की मांग करने वाले हर व्यक्ति को मुफ्त अनाज देने का आदेश दिया है। यह फायदा उन लोगों को भी मिलेगा जो अभी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में नहीं आते हैं। इन लोगों को अंत्योदय अन्न योजना का प्राथमिकता वाले परिवार वर्ग में शामिल किया जाएगा, बशर्ते परिवार के सभी सदस्यों ने आधार लिंक करवा लिया हो। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में विस्फोटक नष्ट करने के दौरान सीआरपीएफ के 4 जवान घायल हो गए। ये दुर्घटना भेजी पुलिस

पुलिस स्टेशन इलाके में हुई, दो जवानों को गंभीर चोट आई है। भारत की पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। सिंधु ने महिला सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स और धरुण मान्नेपल्ली पुरुष सिंगल्स में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। मौसम विभाग ने केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और उत्तराखंड में कुछ जगहों पर मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने बिहार, केरल, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और उत्तराखंड में बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान का भी अनुमान व्यक्त किया है। इस दौरान आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। प्रोग्राम है गीत सुहाने और सुरभि एक बार फिर आपके साथ। तो चलिए सबसे पहले सुनते हैं मीरा साया फिल्म का ये गीत।

गीत सुहाने आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ। बहुत खूब कहा है किसी ने कि जाने किस बात की वो मुझको सजा देता है, जाने किस बात की वो मुझको सजा देता है, जहर देता है ना फिर कोई दवा देता है। गैर मुमकिन है ये छुप जाए मेरी नजरों से, तेरा हंसना तेरे जख्मों का पता देता है, जाने किस बात की वो मुझको सजा देता है, जहर देता है ना फिर कोई दवा देता है।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। प्रोग्राम है गीत सुहाने, मैं हूँ सुरभि आपके साथ। बहुत खूब लिखा है किसी ने कि मेरे होते भी अगर उनको ना आराम आया, मेरे होते भी अगर उनको ना आराम आया, जिंदगी फिर मेरा जीना मेरे किस काम आया।

अभी आप सुन रहे थे मुकेश साहब को फिल्म पत्थर के सनम में, और अगला गीत आपके लिए लेकर आए हैं, फिल्म है त्रिशूल, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में।

गीत सुहाने आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। दिल में न हो जुर्रत तो मोहब्बत नहीं मिलती, दिल में न हो जुर्रत तो मोहब्बत नहीं मिलती, खैरात में इतनी बड़ी दौलत नहीं मिलती, कुछ लोग यूं ही शहर में हमसे भी खफा हैं, हर एक से अपनी भी तबीयत नहीं मिलती।

और इसी गीत के साथ गीत सुहाने का सफर यहीं तक। हमारी आपकी मुलाकात होगी रात सुरमई में 2:10 पर। और अब सुरभि को दीजिए इजाजत, अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद ने कर अधिकारियों का गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त कर दिया है। नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि परिषद ने जुर्माने और कारावास की सजा का निर्णय सक्षम अदालत के विवेक पर छोड़ दिया है।
1: The council recommended removing arrest powers under GST.
2: जीएसटी परिषद ने गिरफ्तारी का प्रावधान हटाने की सिफारिश की है। परिषद ने अभियोजन की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए करने की भी सिफारिश की है। इसके अंतर्गत 5 करोड़ रुपए से कम की कर चोरी के मामलों में मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। सामान्य जुर्माने की राशि 25,000 रुपए से घटाकर 10,000 रुपए करने की भी सिफारिश की गई है।
1: From 25,000 to 10,000.
0: टैक्स फाइलिंग में गलती या भुगतान करने में विलंब करने पर करदाता को वसूली, ब्याज और अनुपातिक जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि परिषद ने नोटिस और कार्रवाई के लिए सामान्य मानकों की सिफारिश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दूरसंचार और डिजिटल प्रौद्योगिकी के बढ़ते महत्व को देखते हुए सुरक्षा ढांचा मजबूत करना बहुत आवश्यक हो गया है। श्री मोदी ने नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन करते हुए ये बात कही।
3: आज जब टेलीकॉम और डिजिटल टेक्नोलॉजी का इतना महत्व है, तब इससे जुड़ी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को भी चाक चौबंद करना बहुत आवश्यक है। फोन की सिक्योरिटी और नेटवर्क की सिक्योरिटी, ये हम सभी की प्राथमिकता है। एक सामान्य नागरिक प्रोटोकॉल या आर्किटेक्चर की भाषा में नहीं सोचता, उसके लिए ट्रस्ट बहुत अहम है। जब उसको फोन पर आए तो उसे पता हो कि कॉल कौन कर रहा।
0: श्री मोदी ने डीप फेक और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए वैश्विक ढांचे का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 5G को विश्व में सबसे तेजी से अपनाई गई टेक्नोलॉजी बनाने में उपकरण निर्माताओं, दूरसंचार संचालकों और दूरसंचार क्षेत्र के हर कर्मी की सराहना की। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विनियमन पर एक परामर्श पत्र अगले महीने जारी किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वादा विषय पर विश्व विकास रिपोर्ट 2026 जारी करने के बाद श्री वैष्णव ने कहा कि परामर्श पत्र एआई और साइबर सुरक्षा एआई के लाभ और संभावित नुकसान पर केंद्रित होगा। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के सूखे से प्रभावित 265 तालुकाओं में अनाज की मांग करने वाले हर व्यक्ति को मुफ्त अनाज देने का आदेश दिया है। ये फायदा उन लोगों को भी मिलेगा जो अभी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में नहीं आते हैं। इन लोगों को अंत्योदय अन्न योजना या प्राथमिकता वाले परिवार वर्ग में शामिल किया जाएगा, बशर्ते परिवार के सभी सदस्यों ने आधार लिंक करवा लिया हो। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में विस्फोटक नष्ट करने के दौरान सीआरपीएफ के 4 जवान घायल हो गए। ये दुर्घटना भेजी पुलिस स्टेशन इलाके में हुई, 2 जवानों को गंभीर चोट आई है। कनाडा की लेखिका एन कार्सन को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। उन्हें यह सम्मान शास्त्रीय परंपरा और समकालीन रूपों के मिश्रण से बने साहसिक और नवोन्मेषी कार्य के लिए मिला है। स्वीडिश अकादमी ने स्टॉकहोल्म में पुरस्कार की घोषणा की। पुरस्कार राशि 1,02,00,000 स्वीडिश क्रोनर यानी करीब 11.5 करोड़ रुपए है। भारत की पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। सिंधु ने महिला सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रोग्राम है रात सुरमई और मैं हूं सुरभि आपके साथ। आप सभी को एक बार फिर मेरा प्यार भरा नमस्कार। ये राह मोहब्बत है, इसमें ऐसे भी मकाम आते हैं। ये राह मोहब्बत है, इसमें ऐसे भी मकाम आते हैं। रुकिए तो पसीना आता है, चलिए तो कदम थर्राते हैं। वो मस्त हवाओं के झोंके, कुछ रात गए कुछ रात रहे। वो मस्त हवाओं के झोंके, कुछ रात गए कुछ रात रहे। जैसे ये कोई रह रह के कहे, घबराओ नहीं हम आते हैं। ये राह मोहब्बत है, इसमें ऐसे भी मकाम आते हैं। रुकिए तो पसीना आता है, चलिए तो कदम थर्राते हैं। तो चलिए सुनते हैं जिस्म फिल्म का ये गाना केके की आवाज में।

जाना था तिनके का सहारा भी, हमने तो नहीं जाना था तिनके का सहारा भी, तूफान ने डुबोया था तूफान ने उभारा भी, है एक जमाने पर एहसान हमारा भी, बिगड़े जो मोहब्बत में कितनों को संवारा भी। फिर ताजा करें चलकर ईमान मोहब्बत को, एक बार जिसे देखा देखाएं दोबारा भी, हमने तो नहीं जाना तिनके का सहारा भी, तूफान ने डुबोया था तूफान ने उभारा भी।

रात सुरमई आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और बहुत खूब कहा है किसी ने कि ये इनायतें गजब की, ये बला की मेहरबानी, ये इनायतें गजब की, ये बला की मेहरबानी, मेरी खैरियत भी पूछी तो किसी और की जबान।

चलिए तो मेरे साथ जरा रह गुजर तक, चलिए तो मेरे साथ जरा रह गुजर तक, दुश्वारे मंजिल है फकत अज़्म सफर तक। जहमत भी उठाई है तो एक और भी जहमत, दिल में भी चले आओ जब आए हो नजर तक।

और इसी गीत के साथ रात सुरमई का ये सफर यहीं तक। आपकी हमारी मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, और अब सुरभि को दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में महिला और बाल विकास पर विभाग के शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। दो दिन का ये सम्मेलन कल शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग के जरिए सहकारी संघवाद को मजबूत करना, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर साझा स्वामित्व को बढ़ावा देना और विकास के परिणामों में तेजी लाना है। सम्मेलन में चार प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इनमें पोषण, शिक्षा, बाल संरक्षण तथा महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण शामिल है। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद ने कर अधिकारियों का गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त कर दिया है। नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि परिषद ने जुर्माने और कारावास की सजा का निर्णय सक्षम अदालत के विवेक पर छोड़ दिया है।
1: The council recommended removing arrest powers under GST.
2: जीएसटी परिषद ने गिरफ्तारी का प्रावधान हटाने की सिफारिश की है। परिषद ने अभियोजन की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए करने की भी सिफारिश की है। इसके अंतर्गत 5 करोड़ रुपए से कम की कर चोरी के मामलों में मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। सामान्य जुर्माने की राशि 25,000 रुपए से घटाकर 10,000 रुपए करने की भी सिफारिश की गई है।
1: From 25,000 to 10,000.
0: टैक्स फाइलिंग में गलती या भुगतान करने में विलंब करने पर करदाता को वसूली, ब्याज और अनुपातिक जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि परिषद ने नोटिस और कार्रवाई के लिए सामान्य मानकों की सिफारिश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दूरसंचार और डिजिटल प्रौद्योगिकी के बढ़ते महत्व को देखते हुए सुरक्षा ढांचा मजबूत करना बहुत आवश्यक हो गया है। श्री मोदी ने नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस की 10वीं संस्करण का उद्घाटन करते हुए ये बात कही।
3: आज जब टेलीकॉम और डिजिटल टेक्नोलॉजी का इतना महत्व है, जुड़ी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को भी चौबन करना बहुत आवश्यक है। फोन सिक्योरिटी और नेटवर्क की सिक्योरिटी ये हम सभी की प्राथमिकता है। एक सामान्य नागरिक प्रोटोकॉल या आर्किटेक्चर की भाषा में नहीं सोचता, उसके लिए ट्रस्ट बहुत अहम है। जब उसको फोन पर आए तो उसे पता हो कि कॉल कौन कर रहा।
0: श्री मोदी ने डीप फेक और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए वैश्विक ढांचे का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 5G को विश्व में सबसे तेजी से अपनाई गई टेक्नोलॉजी बनाने में उपकरण निर्माताओं, दूरसंचार संचालकों और दूरसंचार क्षेत्र के हर कर्मी की सराहना की। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विनियमन पर एक परामर्श पत्र अगले महीने जारी किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वादा विषय पर विश्व विकास रिपोर्ट 2026 जारी करने के बाद श्री वैष्णव ने कहा कि परामर्श पत्र एआई और साइबर सुरक्षा, एआई के लाभ और संभावित नुकसान पर केंद्रित होगा। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के सूखे से प्रभावित 265 तालाबों में अनाज की मांग करने वाले हर व्यक्ति को मुफ्त अनाज देने का आदेश दिया है। यह फायदा उन लोगों को भी मिलेगा जो अभी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में नहीं आते हैं। इन लोगों को अंत्योदय अन्न योजना प्राथमिकता वाले परिवार वर्ग में शामिल किया जाएगा, बशर्ते परिवार के सभी सदस्यों ने आधार लिंक करवा लिया हो। भारत की पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। सिंधु ने महिला सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स और थरुन मन्नेपल्ली पुरुष सिंगल्स में हारकर दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और उत्तराखंड में कुछ जगहों पर आज मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है। 3:11 हो चुके हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम हमराही। आज के इस कार्यक्रम हमराही में आप सभी का स्वागत है, जिसमें आज हूं मैं आपके साथ आपका दोस्त अर्चित। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस प्रोग्राम को एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ।

मिजाज तो मौसम का भी एक सा नहीं रहता, मिजाज तो कभी मौसम का भी एक सा नहीं रहता, तो इंसान का कैसे रहेगा। वक्त और हालात सभी के बदलते हैं, वक्त और हालात सभी बदलते हैं, बस थोड़ा इंतजार है करना पड़ता। 3:19 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है हमराही, मेरे यानी अर्चित के साथ। और आइए इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं एक और बहुत ही प्यारा सा गीत जिसके बोल है तुमसे ओ हसीना।

एक बहुत ही प्यारा सा गीत अभी अभी आपने सुना। मिल जाए अगर खुशियां बिना कुछ किए तो यकीन मानिए बहुत ही खुशनसीब हैं आप। हो जाए पूरे सारे काम थोड़े से प्रयास से तो यकीन मानिए किसी की दुआ के बेहद करीब हैं आप। भटकते हैं लोग दिन रात इस संसार में, भटकते हैं लोग दिन रात इस संसार में, जो नहीं भटके वो मंजिल के बेहद करीब हैं। मिल जाए मंजिल तो शुक्र अदा कीजिए जिसे आप मानते हो। मिल जाए मंजिल तो शुक्र अदा कीजिए जिसे आप मानते हो। बाकी तो सबके अपने अपने नसीब हैं। मिल रही है अगर खुशियां तो यकीन मानिए आप बेहद खुश नसीब हैं। तीन बजकर 27 मिनट हो चुके हैं। सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही मेरे यानी अर्चित के साथ।

3:32 हो चुके हैं। आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही मेरे यानी अर्चित के साथ।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

जो चाहा वो कभी हुआ नहीं, जो चाहा वो कभी हुआ नहीं, और जो हो रहा है वो भी इतना कुछ बुरा नहीं। चाहतों के साथ ही जिंदगी में आगे बढ़िए, चाहतों के साथ ही जिंदगी में आगे बढ़िए, पल जो मिला है उसका सम्मान भी जरूर करिए। सभी चाहते पूरी हों ये जरूरी तो नहीं, अगर चैन और सुकून से गुजर रही है ये जिंदगी, अगर चैन और सुकून से गुजर रही है ये जिंदगी, तो इस बात का शुक्र अदा जरूर करिए। तीन बजकर 40 मिनट हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही।

कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

सुकून में रहते हैं वो लोग जिन्हें थोड़ी भूलने की आदत होती है। सुकून में रहते हैं वो लोग जिन्हें थोड़ी भूलने की आदत होती है। अक्सर बहुत परेशान करती हैं कुछ भी ना भूलने की ये आदतें। कुछ चीजें भूलकर दिल और दिमाग को खाली भी रखना चाहिए। कुछ चीजें भूलकर दिल और दिमाग को खाली भी रखना चाहिए, क्योंकि फुल हो जाए मेमोरी तो फोन और कंप्यूटर भी ठीक से काम नहीं करते।

और इसी क्रम में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं एक और बहुत ही अपने समय का बेहतरीन संगीत, जिसके बोल हैं तुझे देखा तुझे चाहा। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही।

3:53 हो चुके हैं, अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमराही। लीजिए सुनिए इस प्रोग्राम का आखिरी गीत।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में महिला और बाल विकास पर विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। दो दिन का ये सम्मेलन कल शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग के जरिए सहकारी संघवाद को मजबूत करना, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर साझा स्वामित्व को बढ़ावा देना और विकास के परिणामों में तेजी लाना है। सम्मेलन में चार प्रमुख विषयों

0: पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इनमें पोषण, शिक्षा, बाल संरक्षण तथा महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दूरसंचार और डिजिटल प्रौद्योगिकी के बढ़ते महत्व को देखते हुए सुरक्षा ढांचा मजबूत करना बहुत आवश्यक हो गया है। श्री मोदी ने नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन करते हुए ये बात कही।
1: आज जब टेलीकॉम और डिजिटल टेक्नोलॉजी का इतना महत्व है, तब इससे जुड़ी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को भी चाक चौबंद करना बहुत आवश्यक है। फोन की सिक्योरिटी और नेटवर्क की सिक्योरिटी, ये हम सभी की प्राथमिकता है। एक सामान्य नागरिक प्रोटोकॉल या आर्किटेक्चर की भाषा में नहीं सोचता, उसके लिए ट्रस्ट बहुत अहम है। जब उसको फोन पर आए तो उसे पता हो कि कॉल कौन कर रहा।
0: श्री मोदी ने डीप फेक और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए वैश्विक ढांचे का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 5G को विश्व में सबसे तेजी से अपनाई गई टेक्नोलॉजी बनाने में उपकरण निर्माताओं, दूरसंचार संचालकों और दूरसंचार क्षेत्र के हर कर्मी की सराहना की। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद ने कर अधिकारियों का गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त कर दिया है। नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि परिषद ने जुर्माने और कारावास की सजा का निर्णय सक्षम अदालत के विवेक पर छोड़ दिया है।
2: The council recommended removing arrest powers under GST.
3: जीएसटी परिषद ने गिरफ्तारी का प्रावधान हटाने की सिफारिश की है। परिषद ने अभियोजन की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए करने की भी सिफारिश की है। इसके अंतर्गत 5 करोड़ रुपए से कम की कर चोरी के मामलों में मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। सामान्य जुर्माने की राशि 25,000 रुपए से घटाकर 10,000 रुपए करने की भी सिफारिश की गई है।
2: From 25,000 to 10,000.
0: टैक्स फाइलिंग में गलती या भुगतान करने में विलंब करने पर करदाता को वसूली, ब्याज और अनुपातिक जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि परिषद ने नोटिस और कार्रवाई के लिए सामान्य मानकों की सिफारिश की है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विनियमन पर एक परामर्श पत्र अगले महीने जारी किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वादा विषय पर विश्व विकास रिपोर्ट 2026 जारी करने की बात श्री वैष्णव ने कहा कि परामर्श पत्र एआई और साइबर सुरक्षा, एआई के लाभ और संभावित नुकसान पर केंद्रित होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने यूजीसी नेट दिसंबर 2026 सत्र के लिए पंजीकरण शुरू कर दिया है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जेआरएफ, सहायक प्रोफेसर या पीएचडी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन इस महीने की 28 तारीख तक किया जा सकता है। परीक्षा 14 से 19 दिसंबर के बीच होगी। भारत की पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने महिला सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जापान के रिको गुंजी को हराया। तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स और थरुण मन्नेपल्ली पुरुष सिंगल्स में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। मौसम विभाग ने केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और उत्तराखंड में कुछ जगहों पर आज मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। The GST Council, during its 57th meeting in New Delhi, approved a series of measures to ease compliance to taxpayers. The decisions include scrapping the arrest powers of tax officers under the GST regime and raising the threshold for prosecution from 1 crore rupees to 5 crore rupees. Finance Minister Nirmala Sitharaman made the announcement while addressing the media in National Capital.
2: The council recommended removing arrest powers under GST. Council recommended raising the prosecution threshold

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है। 4:10 हो चुके हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम अरुणिमा।

आदतें भी जरा सोच समझ कर ही बनाइए, आदतें भी जरा सोच समझ कर ही बनाइए, क्योंकि जिंदगी गुजर जाती है पर ये आदतें नहीं बदलती, और जब आदतें बदलती हैं तब अक्सर जिंदगी नहीं बचती। 4:11 हो चुके हैं। कार्यक्रम अरुणिमा में आप सभी का स्वागत है, जिसमें एक बार फिर से मैं हूं, और सिर्फ मैं ही हूं आपके साथ, आपका दोस्त अर्चित। तो आइए अब बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम अरुणिमा, एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ।

छोड़िए बेचैनियां सारी, अब जरा सुकून की तलाश में निकलिए। छोड़िए बेचैनियां सारी, अब जरा सुकून की तलाश में निकलिए। बहुत दौड़ लिए बेचैनियों के साथ, बहुत दौड़ लिए बेचैनियों के साथ, अब जरा आराम से ही चलिए। बेकार की उलझनों में खत्म हो जाएगी जिंदगी सारी, बेकार की इन उलझनों में खत्म हो जाएगी जिंदगी सारी। मेरी इन बातों को भी थोड़ा दिमाग में रखिए। पहुंच ही जाएंगे जहां पहुंचना होगा, पहुंच ही जाएंगे जहां पहुंचना होगा। दौड़ भाग छोड़कर अब थोड़ा आराम से चलिए।

मिल जाए अगर समय से सजा हर गुनाह की, मिल जाए अगर समय से सजा हर गुनाह की, तो फिर शायद इतने गुनाह ही ना हो। मिलने लगे सुबह के कर्मों की सजा अगर शाम तक, तो फिर शायद कर्म भी उसी के हिसाब से ही हो। नीचे की अदालत में तो मिलती है सजा तमाम सबूतों गवाहों और के बयानात पर, नीचे की अदालत में तो मिलती है सजा तमाम सबूतों गवाहों के बयानात पर, ऊपर की अदालत में जहां खुदा ही गवाह खुदा ही जज हो, वहां क्यों होती है देर, मेरी इस बात का कोई जवाब तो हो। होंगी खुद खुदा की भी कुछ मजबूरियां शायद, होंगी खुद खुदा की भी कुछ मजबूरियां शायद, वरना हर जगह इतने गुनाहगार तो ना हो। मिल जाए समय से सजा हर गुनाह की, तो फिर शायद इतने गुनाह ही ना हो। चार बजकर 27 मिनट हो चुके हैं और मेरी इन लाइनों का वास्तविक मतलब भी यही है कि अगर कुछ गुनाहों की सजा थोड़ा जल्दी मिले लोगों को, तो फिर कुछ भी गुनाह, कोई भी किसी भी तरह का गुनाह करने से पहले इंसान 100 बार सोचने लगेगा। आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ, कार्यक्रम चल रहा है आपका पसंदीदा, जिसका नाम है अरुणिमा मेरे यानी अर्चित के साथ।

एक बहुत ही प्यारा सा गीत अभी अभी आपने सुना, ना जा कहीं अब ना जा। जीवन में कोई हमें अच्छा या बुरा हमें अपनी जरूरतों के हिसाब से ही लगता है। हमें जरूरत है तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाता है, और अगर हमें जरूरत ना हो तो वही हमारे लिए बुरा हो जाता है। क्योंकि सूरज हमेशा वही होता है, सूरज हमेशा एक ही होता है, जो सर्दियों में तो बहुत ही अच्छा और मई जून की गर्मियों में हमें उतना अच्छा नहीं लगता है।

हैं, इसी तरह लगातार जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ और सुनते रहिए मुझे यानी अपने दोस्त अर्चित को आज के इस प्रोग्राम अरुणिमा में।

ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। हासिल है जमाने की खुशियां तुमको, फिर गमों की इतनी चर्चा क्यों करते हो। बैठे तो हो सुकून से घर में, फिर इतना परेशान क्यों लगते हो। परेशानियां तो सभी के पास होती ही हैं दो चार, परेशानियां तो सभी के पास होती ही हैं दो चार, पर तुम हर समय इतना परेशान क्यों दिखते हो।

कोशिशें तो आखिरी तक कीजिए सफल होने की, कोशिशें तो आखिरी तक कीजिए सफल होने की, सफलता मिली तो ठीक वरना तजुर्बा तो मिल ही जाएगा। 5:54 हो चुके हैं, अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम अरुणिमा। और लीजिए अब सुनिए इस प्रोग्राम का आखिरी गीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में महिला तथा बाल विकास विभाग के दो दिन के शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। कल शुरू हुए इस सम्मेलन में सभी राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और महिला तथा बाल विकास क्षेत्र से जुड़े अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किए जा रहे विभागीय शिखर सम्मेलनों की श्रृंखला में ये दूसरा सम्मेलन है। इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को मजबूत करना, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना और केंद्र तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाना है। सम्मेलन में चार प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इनमें पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, बाल संरक्षण तथा महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दूरसंचार और डिजिटल प्रौद्योगिकी के बढ़ते महत्व को देखते हुए सुरक्षा ढांचा मजबूत करना बहुत आवश्यक हो गया है। श्री मोदी ने नई दिल्ली के यशोभूमि में 10वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन करते हुए ये बात कही।
1: आज जब टेलीकॉम और डिजिटल टेक्नोलॉजी का इतना महत्व है, तब इससे जुड़ी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को भी चाक चौबंद

0: करना बहुत आवश्यक है। फोन की सिक्योरिटी और नेटवर्क की सिक्योरिटी ये हम सभी की प्राथमिकता है। एक सामान्य नागरिक प्रोटोकॉल या आर्किटेक्चर की भाषा में नहीं सोचता, उसके लिए ट्रस्ट बहुत अहम है। जब उसको फोन पर आए तो उसे पता हो कि कॉल कौन कर रहा।
1: श्री मोदी ने डीप फेक और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए वैश्विक ढांचे का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 5G को विश्व में सबसे तेजी से अपनाई गई टेक्नोलॉजी बनाने में उपकरण निर्माताओं, दूरसंचार संचालकों और दूरसंचार क्षेत्र के हर कर्मी की सराहना की। वस्तु और सेवा कर GST परिषद ने कर अधिकारियों का गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त कर दिया है। नई दिल्ली में GST परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि परिषद ने जुर्माने और कारावास की सजा का निर्णय सक्षम अदालत के विवेक पर छोड़ दिया है।
2: The council recommended removing arrest powers under GST.
3: GST परिषद ने गिरफ्तारी का प्रावधान हटाने की सिफारिश की है। परिषद ने अभियोजन की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए करने की भी सिफारिश की है। इसके अंतर्गत 5 करोड़ रुपए से कम की कर चोरी के मामलों में मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। सामान्य जुर्माने की राशि 25,000 रुपए से घटाकर 10,000 रुपए करने की भी सिफारिश की गई है।
1: टैक्स फाइलिंग में गलती या भुगतान करने में विलंब करने पर करदाता को वसूली, ब्याज और आनुपातिक जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC नेट दिसंबर 2026 सत्र के लिए पंजीकरण शुरू कर दिया है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जूनियर रिसर्च फेलोशिप, JRF सहायक प्रोफेसर या PhD के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन इस महीने की 28 तारीख तक किया जा सकता है। परीक्षा 14 से 19 दिसंबर के बीच होगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने सभी संस्थानों को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने एक पत्र जारी कर विश्वविद्यालयों और संस्थानों के प्रमुखों से दिव्यांगजनों के लिए समावेशी और सुलभ शैक्षिक वातावरण सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है। आयोग ने संस्थानों के प्रमुखों को समान अवसर प्रकोष्ठ के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने का और दिव्यांगजन विद्यार्थियों को दिए गए प्रवेश, शिक्षण और गैर शिक्षण पदों की भर्ती और छात्रवृत्ति तथा छात्रवृत्ति से संबंधित निर्धारित सांख्यिकीय जानकारी प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया है। पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने महिला सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। उधर क्रिकेट में भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 5 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज रांची में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत ने श्रृंखला के पहले मुकाबले में जीत दर्ज कर 1-0 की बढ़त बना रखी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani, the news read by Akhila. The GST Council during its 57th meeting in New Delhi approved a series of measures to ease compliance with taxpayers. The decisions include scrapping the arrest powers of tax officers under the GST regime and raising the threshold for prosecution from 1.5 crore rupees to 1 crore rupees. Finance Minister Nirmala Sitharaman made the announcement while addressing the media in national capital.
2: The council recommended removing arrest powers under GST. Council recommended raising the prosecution threshold from 1 crore to 5 crore. So prosecution is not going to happen for anything below 1 crore. Till now that's been the threshold. Now it's taken up to 5 crores.
4: The punishment, whether a fine, imprisonment or both, will be left to judicial discretion in each case. A taxpayer who files a return late, makes a mistake or falls behind on payment will face recovery proceedings, interest and a proportionate penalty. The finance minister said no changes has been made to GST rates at the meeting and that the rate structure is settled. She said the GST Council has recommended common standards for notices and proceedings. Prime Minister Narendra Modi will participate in the valedictory session of Departmental Summit on Women and Child Development in New Delhi today. The two-day Departmental Summit, which began yesterday, is witnessing

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। 5:10 हो चुके हैं और ये समय रहता है आपके पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है भोर सुहानी।

हमेशा की तरह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज के इस कार्यक्रम भोर सुहानी में, और मैं हूं लगातार 2 घंटे से मैं ही हूं आपके साथ आपका दोस्त अर्चित।

तो आइए शुरू करते हैं आज के इस प्रोग्राम को किशोर कुमार जी की आवाज में एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ। फिर कुछ होंगी बातें और कुछ होगी चर्चाएं।

किशोर कुमार जी की आवाज में बहुत ही प्यारा सा गीत। पहुंचना है ऊंचाइयों पर तो मजबूत अंदर से है होना पड़ता। पहुंचना है ऊंचाइयों पर तो मजबूत अंदर से है होना पड़ता। रहना है शिखर पर तो प्रयास दिन रात है करना पड़ता। जमीन से जुड़कर ही हासिल होते हैं मुकाम आसमानों के। जमीन से जुड़कर ही हासिल होते हैं मुकाम आसमानों के। हवाई जहाज को भी उड़ने से पहले जमीन पर है चलना पड़ता। 5:19 हो चुके हैं। सुनते रहिए कार्यक्रम भोर सुहानी।

हौसले और इरादे की कोई कमी नहीं है किसी के पास, पर सफल सिर्फ चंद लोग ही होते हैं। करते हैं जो लगातार प्रयास, इरादे अक्सर उन्हीं के सफल होते हैं। रख कर हौसले, करते रहो दिन रात काम। रख कर हौसले, करते रहो दिन रात काम। सिर्फ और सिर्फ हौसले रखने से नहीं मिल जाते हैं मुकाम। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भोर सुहानी, मेरे यानी अर्चित के साथ।